बड़ी गदा छा गई, नजर मिल गई, कल खिल गई, कसम हो गया, जिया हो गया, अरे हो गया, अरे हो गया, अरे हो गया, अरे हो गया।